और मस्तक हर प्रभु लिखिया गुरु नानक मिलिया। भई गुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी धूड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम धूड़ सा।

मानसिक तौर पे अवेसले होके पछड़ते जा रहे हैं। सिख वास्ते मेरी धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का हुक्म है, किसी परिवार विच बच्चा पैदा होवे हुक्म है कि गुरु पिता का कि पहला नाम तुसीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछ के रखना। कोई किसी परिवार विच बच्ची पैदा होवे उसका नाम तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पहला नाम पुछ के रखना। ते सतगुरु कहिंदे ने कि दूसरा नाम सिखा तेन पुछण दी लोड़ नहीं, तेरा नाम मैं ही रख देता। बच्चा होवे उसका नाम लास्ट नेम सिंह रखना, कोई बच्ची होवे उसका नाम कौर रखना। पर दुख आउंदा है कि जदों बच्चा किसी हॉस्पिटल विच पैदा होंदा है पहला नाम भी घर दे विच ही रख लिया जांदा है, जिहड़ा गुरु नूं पुछिया नहीं जांदा। ते जिहड़ा धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने हुक्म कीता है ओह ते नाम गुआच ही जांदा है। अज अफसोस है कि 14-15 साल के बच्चों नूं भी नाम पुछ के वेख लो कि तुहाडा नाम है की है। कोई दसेगा कि मेरा नाम कोई सिमी है, कोई गैरी दसेगा, कोई हैरी दसेगा। ना ही गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम है ते ना ही धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का बख्शिया होया नाम साडे पास है। अपने आप नूं जिथे सिक्खी सरूप विच आपां दुनिया के सामने पेश करके माण प्राप्त करना सी ते अज नाम के पक्षों भी आपां अलोप हुंदे जा रहे हैं, गुप्त हुंदे जा रहे हैं। आपां नूं अज परिवारक तौर पर सोचण की लोड़ है। गुरु प्यारे सतगुरु जी का हुक्म

प्रकार के आकार नाना प्रकार श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। जोग भोग

निगम शेखादिक कथिक नेत नेत कर पूरन ब्रह्म गुरु ज्ञान सिखन लिखाए हैं।

সদর না গাওকে তুমি আমার নতুন মায়া পবিত্রে দীক্ষিত আসানু মিত শরীর লে আয়ে মেরা ভাই নহি তায়ে থে আমন দি সন হর দিন জোর করতা হে রাম সদগুরু इंसान के जीवन का मुद्दा कर्म बंद धन गुरु अर्जुन देव पातशाह समझते हैं कुदरत चीज न जानिए वड़ा वे प्रवाह कर बंदे तू बंदगी जिथे घट में बंद बंदगी का स्वरूप की इंसान का जीवन बंद कहते कि कारोबार छे कम कार गलते सारा दिन माड़ा लेके वाहगुरू का जाप भी करते बंदगी गुरु का सिख धर्म की किरत करता है यह भी बंदगी भी सिमरन धर्म की किरत करनी यह भी बंदगी है बाबा जी सत्यन जी महाराज मानसा वाले बाबा जी कई जी अपनी पवित्र पावन सुनाते बचन करते सन वेला आदमी से धरती से पानी जो निकम्मा आदमी है उन धरती भी प्रमाण नहीं कर्म कर्म कम कर्म इंसान का कर्म हर एक पानी पुलिस है उदम करेंगे जीव तो उत्तम करना इंसान का फल और उत्तम को फल लेना है मालिक भी बस जरा उदम ही नहीं करना और कुछ नहीं जो इंसान हिम्मत करते हैं उन्होंने मदद खुदा रब है उदली इंसान की मदद और वाहगुरु नहीं उदम करे दिया जीव किसान उदम करता है घर बैठा ही कह दे आपे बीज उपवेगा आपे फसल घर आ जाएगी गलां ना आदमी किसान का फर्ज धरती मार के वत्तर वेले धरती में बीज पा इतना उद्यम जरा है एक इंसान फिर धरती जो बीज को बाहर करना है किसान का काम नहीं यह वाहगुरु की बख बीज ही नहीं पाया धरती को सुवारे तो किसान भुखा मर क्या कितनी जमीन उसने बोल इतना उद्यम किसान का था बीज पाल लेना बीज को उगाना वाहगुरु का था और बख्श इसे सूझी फकीर ने भी

योगी का जत होए राजे चुनी न्याओ की पिक्र ही का तत दान जस्ती का तरण में दान सुन दान सुन जीते सकते रहना पवित्र रहे पिता के भी माया दंग मारन लगे बहुत ही माया है जी दंग मार दी है किस तरह होमे आ जाए कहीं माया का ही मनता है माया का ही मान करनी वाहगुरू की बख्श यह तो वाहगुरू की दात कि वाहगुरू की अर्पण करते नहीं पानी चलता पवित्र रहा है तन चंगे पास गुरु के लेखे लगता रहे तो उस सुखदाई है दान पुन करना यह भी सिमरन सत्संग करके लैंना यह भी सिमरन स्वादन स्त्री पति की सेवा कर रही है बाबा जी बच्ची कर रहे ये कोई बीबी तारे माड़ा फेरी रोटी का टाइम हो गया प्रशादा तैयार नहीं किया पति घर आए भगवान प्रशादा तैयार हो क्योंकि टाइम है रोटी का खाने उन्होंने कहा स्वामी मैं तो नाम पर जपती रोटी आप पका के खाई बाबा जी कहते इसका नाम नहीं है ये मनमत तेरी माड़ा फेरी ये मनमत है नाम की है ये रोटी का टाइम हो गया तो अपने पति वास्ते सोना प्रशादा त्याग करके पत्नी क्योंकि कम कर दिया या उन्हें कम किया तो फिर भोजन त्याग करना यह भी सिमरन है बाणी भी पड़ती है सदगुरु जी पहले पहले हर कोई जागे किसी महापुरुष ने किए सारी दुनिया सारे जाग रही दूजे पैरे भोगी तीजे पैरे तस्कर जागे तस्कर कहते चोर तीजे पैरे तस्कर जागे चौथे पैरे जो वो समय योगी ने जागे गुरसिख ने जाग पिछ लगाती जागर जाके की करना नाम दान इशनान जरा इशनान करना ते बह के जपना सपना दान को नाम दान इशनान जरा फिर मिठा बोलन नहीं विचरन नाम जप के बाणी पढ़ के नहीं कि लोगों ने झगड़ी करता नहीं करता तेरे वर्गा तो नहीं मिठा बोला ये अमृत पीता है तो रचना मिठास पड़ी है मिठा बोलन निर्चल निम्रदार कर गुरु के सिख का मन नीवा तो मत रचकर उल्ट चल गया तो मन ऊंचा हो गया तो मत नहीं तो ताइ सिखी नहीं जी खुशबू है साढ़े अंदर कट मिठा बोलन निर्चल हथों देके पढ़ा मनाए हथों देके तो शुक्र करना पाचा तेरी कृपा थोड़ा सोना खाऊन थोड़ा सोना तो थोड़ा पैसा भी नहीं लिखे सिखदा है कर्म थोड़ा सोना तो थोड़ा पर लिखदार भी नहीं कितना थोड़ा समीए तो कितना थोड़ा खाइए जी अगे अठोड़िए खाली तो सत खा ली जे जे बारह घंटे सौने तो दस घंटे सौने कोई निकदार नहीं कोई सुनिए ने बाबा जी की भी बेनती की बाबा नरसिंह सिंह जी महाराज बेनती की महाराज आपके पत्र बाबा जी कह लगे इतना थोड़ा खाओ जिन्हें नाम सारा दिन शरीर पीड़िया ही ना खते डिगा ही ना वो भी कोई खाने बाबे लिखे है सबरत मिठे बनिए सुनिए सारे हर तुरसी मुख बोलने मार नाल किए छत्ती अमृत भावे जाको नदर करे बाबा होर खाना सुखी खुआर जित खाते तन पीड़िए मन में चले विकार वो खाना की खाते जेदे का मन विकार ही बने आए हर मेरे पीने मुसलमान रोजे रखते सिख रोज रोजा रखते रोजे का मकसद यह नहीं कि खुदा आप कोई सोचा

शरीर दी शुद्धि, शरीर दी शुद्धि। डॉक्टर को जाने डॉक्टर साहब बुखार हो गए, क्यों हो गया? खट्टे बुखार आते सर, एक दिन फाका कर रहे, दवाई मिल गई, अपने आप पैदा ठीक हो जाए। तो इसी तरह रोजा रखना, वर्त रखना, ये नहीं भी कोई एक कर्म है, नहीं, सिर्फ शरीर की शुद्धि हुआ, शरीर ठीक हो जाता है, पर गुरु सिख तो रोज रोजा है, रोज वर्त रखता है। तो खेड़ा थोड़ा कर्म ये ना शरीर ठीक रही, डॉक्टर को जाने नहीं पड़ता। बाबा जी ने वचन किया, इतना थोड़ा खाओ जिदे नाल शरीर बोझ नहीं ना हो, इतना थोड़ा सौ जिद नाल साडा अमृत रास्ताओं की ना, इतना अल्प आहार अल्प सी, थोड़ा सौना खाना, थोड़ा बोलन गुरु पाए, एक बहुता नहीं बोल, सारा दिन गप्पा नहीं मारे, थोड़ा ये भी गुरमत है। फिर काल खाए सुकृत करे, काला काल के सुकृत करे, वड्डा होए ना आप कराए, जे गुरु ने वड्याई बख्शी है तो जनाऊंगा नहीं, वड्याइयां गुरु वालों आउंदियां ने, फिर हमें च नहीं आता, अरदास करता सुधा के अरदास तुम्हारी जीओ पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नहीं, ये गुरु बख्शिश तो गुरु दी, वड्डा होए ना आप कराए। फिर भाई साहब जी कहते सात संगत मिल गांव दे, रात दे निचल कर, ये दो टाइम दे मेरे किरत भी करनी, कमकार भी करना, पर अमृत रहे ते छावा जी आके गुरु नाल जुड़ना है, जिस तरह तुसी जुड़ के करना की है, शब्द सुरत पर जा करे गुरु दे शब्द दी विचार सुननी ते कर, शब्द पर से मन पर जाए। फिर भाई साहब जी कहते हैं सिख का जीवन आस्था विच निराश, आस्था विच रहिंदा होया निराश, क्योंकि जे आशा आशा रखिए तो जे ना पूरी होवे तो मन बढ़िया चाहती है कदम चला, आशा विच निराश ते सिख है उदम करे, जिस तरह तुसी उदम की बंदगी का स्वरूप की है। बाबा जी बचन करते सन, कर बंदे तू बंदगी जिचिर घट में सा हो, बंदगी का स्वरूप हुक्म है, आखो क्योंकि स्वरूप जितने तक स्वरूप लखने ना ना बढ़े उतने तक मन जुड़ता है, तो निशाना कोई नहीं है ना सब, तो बंदगी का स्वरूप जोड़ा है वो है हुक्म भी सिख जरा है, किरत भी करता है, नाम भी जपता है, बच्चिया नाल भी प्यार करता है, सैर भी करता है, हंसता भी है, तंगे कपड़े भी पाता है, गुरु नाल भी जुड़ता है, ये सब गुरु का रूप। फिर हुक्म मनिए होवे परवान तो खत्म काम है, बस भाई समझा साहबान ने तीन दिन वास्ते किया नहीं लिया, सैयद बुद्धू शाह को आ गया चिट्ठी लैके, कहता बुद्धू शाह छेती चिट्ठी पढ़ के सुना क्योंकि मैं घर पहुंचा। सैयद बुद्धू शाह ने गुरु का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया, वो लिखे आया कि तुम धर्म करो।

तेरा सिक्का खाली चिट्ठी लैके तेरे को आ रहे हैं पाई तेरू तो अपने कोल रखना किन्ना चे साडे कोल तां तीन दिन नहीं रहा बड़ा समझाया पर गुरु शाह तू इसने इसनों अपने कोल नौ महीने

मैं मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय उनसे निकली मछली पानी को बिछड़ी नहीं तो जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म च रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है जिससे मन मंत्र आ जाता है तेरे लगी आन होता है अपने पाने जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दाव पंछी की जाने आकाश के दावड़ा पाई सजास की जाने गुरु के दावड़ा है मेहमान न जाने दे वे वा तेरा भाई सज्जा चला जा गुरु कौन ये विचार बनाया है तय चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु नु देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करी गुरु मैनू भी दर्शना दिता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने ढक दिता है तेरी तेरी पत्रकार लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने ढक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं कर चंगा भी तेरी मैं चलो मना अपने पिंड चलते शायद कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड चलते आया की वेखिया जिथे कखा की कुली सी उथे आलीशान मकान बनया बिर बिर पिया तक जे सुदामे ने तकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदामे दोवे सुदीपर की कोल पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन समीपर जी की घरवाली ने कहा बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया गलगड़ी दोवे तुरंत है समीपर विखी की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जिले भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे गल सुन कौन लै थोड़े गए छोले चने गल पोटली बन दिते किसी डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का घुट पी लिया चले गए लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे गरमकार की रेत मारी डांडी मार रात पै भगवान कृष्ण ने कहा सुदामे हुण किदां करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुदामे ने कहा महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इहदे उत्ते चढ़ जांदे रात इत्थे बिताउंदे आ दिन होवेगा फिर तक एक दाण दे उत्ते भगवान कृष्ण जी बैठ गए दूजे उत्ते सुदामे भुख लगी सुदामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी ते छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लईए भुख बड़ी जालम थी तो सुदामे ने की किया छोलिया वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे प्यारी सास संगत जिस वेले छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान उते बैठे भगवान कृष्ण ने कहा सुदामिया कुछ खाना भी सुदामे ने छेती छेती मारा इतने पता की खाने मैं तो कुछ नहीं बैठा भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान भी कहने
लगे हुए स्वामियों को खा रहे हैं। महाराज तो दुखी तो पता है इतने पता तू मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते एवं गरीबा ना विरास ना कर भगवान जी बेचुक कर कोई समय में बात प्यारी साल से नृत्य ने सुना देने तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कहने लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है मारे तो रुकी ना पता है भगवान जी कहने लगे सानू आवाज भी आती है दंदा की तो सुदामी ने कि हमारे तुम बड़े खुश तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखन लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है तो तुम कि कमरे तो उस वेले भगवान पिछले बचन कर दिता जाओ दलिद्री दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी जरीर जाओ दलिद्री तो मित्र प्रो कीता है क्योंकि वन के खाना संग जी दिखा के खाना शर्मिंदगी ते खो के खाना गंदगी जो खो के मैं खाता है वह गंदगी खाता भगवान ने वो वचन किया पूरा संदीपा लिखी को पढ़ के विदेय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारोबारी सुशीला निके निके बच्चे खान को कुछ नहीं मिलता है तो सुशीला ने किया कहानी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामे ने किया था पढ़ना भगवान को क्यों नहीं जानते आप भुखे पर मरते जी भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है उन्होंने को क्यों नहीं जानते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मती तो जन सुनाने लेके अपना गांव वाली घर तक तेरी ठीक है पर मित्र को बदले शर्म ध्यान को तेरी बने शर्म का भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी लिख रहे हैं विप्र सुदामा दाल विप्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल भी बाल सखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री खेल है वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह की कोल मुलाकात होगी किस तरह भी कोल पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए उनका नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता है कई दिन बाद सिंह भगवान को भी कहे जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला और अंदर जाने लगा दरबार में रो क्या वो किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल जाए पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता आया पीछे हट कोई गल नहीं मैं अगे ही पता थी गरीबान को हाँ होंगे एवं घरवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्ल वर्ता दे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू कि मित्र रो के कह लगा है दरबार मैं सच ही दरबार के बीज ला के थके पत्थर से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इसी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर ही खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ

शब्द भगत नामदेव दा है जेड़े परमेश्वर नु कहंदे हन तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रूड़ो कहंदे ने सोना ऐ परमेश्वर तेरा नाम बड़ा सोना है रूप रूड़ो तेरा रूप बड़ा सोना है अत रंग रूड़ो बहुत ही सोना ते प्यार

संत ज्ञानेश्वर दे नाल मारवाड़ देश दी यात्रा कर रहे सन। मारवाड़ रेतला इलाका जिथे पानी दी बहुत

छोड़ते चले गए। प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरश सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू प्याया, कुछ लोकां नू भी प्याया ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनता है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़े।

प्यार कर दी, बरसात पवेता धरती खिल उठ दी, कुसम फुल नुके बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवरा।

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवे धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल, कोकल अंब दे नाल।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए। ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अधी रात करो उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तू स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वास्ते

ते स्वामी जी तू पहला ही अगे ही दे जाए के लम्मा पया कबीर ते थाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर साहब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखिया पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं। ते कहंदे ने भांडे विच जिहड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जिहड़े महापुरश ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं ते नाले के उठ राम के राम कहो। ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

0: ठोकर लाण दा ऐसा असर होया जिस तरह लोहा पारस नाल लग जावे उस वेले सोना बन जांदा है। इसे तरह ही कबीर साहब दे शरीर दे नाल स्वामी रामानंद दा पैर लगा ते लूलू दे विचों राम राम दी आवाज आन लग पई।
1: जो लोहा पारस छो

ऐसा असर हो गया स्वामी रामानंद दे पैर लगा के एक कहण दा के उठ राम के राम को भाई गुरदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदों इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा है। पे चिंता विच नहीं के सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा किवें करा ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दे। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है। कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान ली है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करते हैं।

ब्राह्मण कहन लगा जाओ धने कोई मखौल ठाकर तेनू दे दिया तेनू की पता कि मैं पूजा करी दी जा जाके गवां चार। धन्ना कहन लगा देख पंडता सीधी तरह ठाकुर दे दे नहीं ता मैं दूसरी तरह लवांगा। ब्राह्मण कहन लगा जाट है इन्हें पिछा नहीं छड़ना। कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के धन्ने नूं दिता अपना पिछा छड़ाण वास्ते। पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नूं गैल छुड़ावे। गैल अपना पिछा छुड़ाया ते लै ठाकुर।

प्रगट होके सामने बैठ गए। कहन लगे तने आ तो याद करदा सी ले मैं आ गया, तीन दिन हो गए ने तू कुछ नहीं खादा, ले तने आ पहला तू रोटी खा मैं बाद विच खा लांगा। तन्ना कहन लगा नहीं ये तुहाडे वास्ते है, पहला तुसी छको फिर मैं छकांगा। कहन लगे नहीं तने आ तेनू तीन दिन हो गए ने भुखा बैठे आ तू कुछ नहीं खादा। ते तन्ना हाथ जोड़ के कहंदा है जे इन्ना ही मेरा ख्याल सी ते पहला क्यों नहीं आ गए, तीन दिन मैनू भुखा बैठाई रखी है, तेरे ते बड़े सेवक ने, बड़ी दुनिया तेनू भोग लवाण वाली है, जे इन्ना ही दुख है ते पहला आ जाना सी। ए सुन के भगवान कहन लगे नहीं तने आ तेनू की पता जे तू तीन दिन कुछ नहीं खादा ते मैं भी तीन दिन कुछ नहीं खादा, भगत भुखा रवे परमेश्वर किवें खा सकदा। तने आ मैं भी तीन दिन कुछ नहीं खादा, मैं तेरा प्यार देख रहा सा। भाई गुरदास जी आप

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई, तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे, लै भाई तन्ने आ, रोटी तां असीं खा ली, हुण दस तैनू चाहीदा की है? तू याद कीता, मैं आया, हुण मंग तैनू की चाहीदा? तां तन्ने ने हाथ जोड़ ले, कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए, लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने, भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप,
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर अकाल पुरख।

परमेश्वर घर बन गया, दाल आटा घ्यो ए भी मिल गए, पैरी पाण वास्ते जुतियां, सोने पाण वास्ते कपड़े भी मिल गए, अनाज भी मिल गया, गां ते मज भी मिल गई, आन जान वास्ते एक घोड़ी भी मिल गई, सोहना घर बन गया। पर एक चीज की कमी है, भगवान कहन लगे धन्या, ओ केड़ी कमी? कहन लगे परमेश्वर, ओ कमी है घरवाली दी। भगत जी कहंदे ने, घर की गेहन चंगी, घरवाली आज्ञाकार, तेरा नाम जपण वाली चाहीदी है। भगत जी अपनी बाणी

तने ने नाम जपे है, प्यार कीता ओ तन्ना अनपढ़। नाम जपन दे करके दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है, ओ तन्ना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे। उस तन्ने ते धन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी, तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी। तन्ने नु अपने नाल बठा लिया। जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेकद, ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेकद। भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने, जेड़े उपदेश करते ने, ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो, सारयां दी उपालना करन वाला है, तू बंदगी कर, तेरी भी उपालना करेगा। दुनिया दी चिंता छड़, नाम दी चिंता कर, क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

कैद करके ले जा रहे। इतिहास गवाह है सारे हिंदुस्तान विच कोई भी ऐसा सुरमा ना नितरिया जेड़ा अहमद शाह अब्दाली दा मुकाबला कर सकदा, उहदा रस्ता रोक सकदा। अहमद शाह अब्दाली दा एक काफला हिंदुस्तान नूं लुट के पंजाब दी धरती तों निकल रहा सी। ओह बीबियां जिन्हां नूं अहमद शाह अब्दाली कैदी बना के लिजा रहे है, ओह रोंदियां कुरलांदियां जा रही ने, कोई सानू बचाओ पर कोई बचाण वाला नहीं। अचानक कुछ सिख इन्हां नूं नजर आए, इन्हां ने वास्ता पाया, बचाई भाई कच्छ वाले। कच्छ कहंदे ने कशहरे नूं, क्योंकि सिख कशहरा पहनदे ने, गात्रे कृपान, हाथ विच कड़ा, सिर ते दस्तार अते सोहना दाड़ा। ए स्वरूप देख के उन्हां बीबियां ने पुकार कीती, वास्ता है तुहानू, तुहाडे गुरु दा सानू बचाओ। सिंघां ने फैसला कीता, हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां नूं असां गजनी दे बाजारां विच रुलण नहीं देना। फैसला करके गिनती थोड़ी है सिंघां दी, अहमद शाह अब्दाली दी फौज बहुत है। सिंघां ने की कीता, सलाह करके छोटे छोटे जत्थे बना ले, जिधरों अहमद शाह ने जाना है उस रस्ते विच जगह जगह

तो ज्यों ज्यों सानू वढ़ रहे हैं असि खत्म नहीं हो रहे सगा और वधे जा रहे हैं। तू एक दिन जरूर मर जाएगा पर गुरु के सिंह कदी खत्म नहीं हो सकते। क्यों? कि सच वास्ते लड़दे ने, इंसाफ वास्ते, अपने वास्ते नहीं।

लोग बड़े दूर चले गए। गुरु ने खालसे नूं अपना स्वरूप दिता है ते नाले कहा जदू तक खालसा खालसा रहेगा वो कदी हारेगा नहीं। मैं भी उहदे नाल रहांगा ते जिदा सिर्फ भेस ही खालसे वाला है जिदी रहत नहीं वो खालसा नहीं। खालसे दा मतलब खालस जिदे विच कोई विकार नहीं वैर विरोध दी भावना नहीं जिदा जीवन विकारां तों उत्ते है ओ खालसा ते खालसा गुरु दा रूप। पर बड़े ऐसे लोग ने जिन्हां दा पहरावा ते है पर ओ गुरु के सिख नहीं।

गुरु दी रहत तू दूर ओ गुरु की खुशी कदी प्राप्त नहीं कर सकता। आओ अरदास करिए सच्चे पातशाह कर कृपा उच्चा सुचा गुरसिखी जीवन दे असलियत वाला जीवन नकला भरिया जीवन नहीं अंदरू होर बाहरू होर।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

सब तन का गुण सतगुरु गुण सतगुरु जित मिल हर पड़ता भजिया तू तन तन समर्पण कर मैं तुझ बिन

नदी के किनारे से दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

अमृत नु प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुर शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है और खुशकिस्मत गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रसता है और पीने भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती ओ बिन अमलां तो खीवे उन्हां नू झूठे अमल दी लोड़ ही नहीं। जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती ओ बिन अमलां तो खीवे अठे पहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे। फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा जी बाबा ईसर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी। पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनू पकाइए ओदे वास्ते तेल सरसों नूं नपीड़ के कढ़ना पैंदा। सरसों कित्थों उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा बट दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी। फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोहना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा दे जो भी जग गया दीवा ते लोकी आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु महाराज के दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक दे कन सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम धन्यवाद। जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबो कुछ दिता है साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार दी बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लक्ष्मीदार तुसी बाहर चले जाते हो ते फिर उदास होके मेरे कोल आ जाते हैं ते कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी अगला भी कोई बापू दूजिया ने बापू अपने बच्चिया मठियाईया लिया के दें दे। खिलौने लिया के दें दे। तरह तरह की चीजा लिया के दें दे। बेबे साडा भी कोई बापू वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हुण ना जा हुण ना परदेसां नूं जा तो प्यारी साध संगत परमकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता। पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चढ़ जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारियां नूं जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दुलारे बेबे मेरे निरंकार रब नाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोलो मोहंकार दी अगली सदी बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत में ले तो पिछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वह इतों कुछ नहीं लै जाता ते जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگاہ کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگتی پہلا سیر بولنے پیچھے ساری سنگت واہ گرو

झूठ ना बोली संगत विच खलोता है। हाथ जुड़ गए। बाबा जी मां जान के सेवा कदी नहीं की। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखन लगे, ओए चनना मां नू तके मार के रब नू करो।

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां सिद्धां पुरखां दियां।

जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नी आए, त्रिग जीवै त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई।

से जन युग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिन का भौ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप

अनेक पढ़े वो सिमरत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपर

ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ किछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत ने भिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई रूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी, कहू फूल राजा हवे बैठा, कहू सिमट प्यो शंकर कैठा, सगरी सेठ दिखाए अचंभव, आद जुगात स्वरूप सी अंभव, आवरिच्छा मेरी तुम करो, शिख उबारा शिख संघरो, दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, शकल मलेश करो रण घाता, जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत।

तैं सब काला दुष्ट अरिष तरे तत्काला कृपा दितन जाय निहर हो ताके ताप तनक मो हर हो रिद्ध सिद्ध घरमो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताए उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट

सुबह करके अरसात समुद्रन की मत कहो, काट वनस्पति सगरी दिख बहु के देखन खाज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो, काल कृपा ना बिनती

तेरो अंत न कहो मैया कोट फराद हमारे कंधो कोट फराद हमारे कंधो अनख विधि समझाओ अनख विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहे

नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंडली विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न हो। सिद्धां ने बेनती कीती कि जिस परमात्मा की कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारिआं नूं रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जांदे हन, देण वाला कदे नहीं थकदा। वह परमेश्वर जो अनथक है, गरीब नवाज कृपा करो, सानू दसो वह साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। तां धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, वो सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा। जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद की घरवाली रोज सतसंगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू भी परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का शक्ति है। उचारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर

रुपए। मगरे मगरे राजा जा रहा है, रानी जदों सत्संग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदे, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊं चुक के घर ले आंदी, भई पुछांगे भई तेरी दूजी खड़ा किथे है, ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां, कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पे। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ा किथे है, तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाऊ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री वाहे। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाऊ परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है या नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया तां कहन लगा आ जरा अपनी खड़ावां तो दे, मेरियां हैं नहीं इत्थे नेड़े, ते मैं इशनान कर दूंगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राणी ने जदों दोवें खड़ावां उहदे अगे रख दित्तियां, हैरानी दी हद नहीं रही कि मैं तां खड़ावां चुक के लियाया सां, इह दूसरी कित्थों आ गई। जाके जां पेटी खोली तां विच उह खड़ावीं पई है। राजे ने कहा सच सच दस ए दूजी खड़ाऊ कित्थों आई है, मैं तो रात तेरे मगर गया सा, जिथे तू रोज जांदी है ना परमेश्वर दा सिमरन करन, मैं भी रात उथे गया सा, ते मैं उथों तेरी खड़ाऊ चुक के ल्यांदी सी पेटी विच बंद करके जंदरा मार के रखे है, ते ए दूजी खड़ाऊ कित्थों आ गई है। तां राणी दे नैन कटोरे भर आए, आख्या राजा ए सब परमेश्वर दी कृपा है, जेड़े उसका नाम जपदे हन उना दी लज्जा ओ आप ही रखदा, उना दी पत ओ आप ही रखदा। इसलिए हजूर कहंदे हन भाई जो अमृत वेले नाम दा बीज बोंदे हन फिर गुरु तो कदे विछड़दे नहीं, गुरु सदा उना दे अंग संग होके विचरदा, गुरु सदा उना दे नाल रहिंदा। इसलिए उस अकाल पुरख वाहिगुरु की शपथ सलाह नाल जुड़ के जिन्हां ने अपना जीवन बतीत कीता उन्हां दा लोक भी सुखी हो जांदा है, पर लोक भी सुहेला हो जांदा है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार।

पांडा ते नाई सगन लेके श्री अमृतसर पहुंच गए। इधर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी साहिब जादे दी कुड़माई दी तैयारी आरंभ कर दिती। वड्डा सारा पंडाल सजाया गया। गुरु साहिब संगतां विच विराजमान हो गए। जिस वक्त गुरु जी तो इजाजत लेके पांडा साहिब जादे दी झोली विच सगन पाउन लग्या, ता संगत विचों एक सिंह ने उठ के गुरु साहिब नूं बेनती कीती, महाराज सगन प्रवान करन तो पहला दिल्ली दियां सिख संगतां दी चिट्ठी नूं पढ़िया जावे ते उस ते गौर फरमाया जावे। गुरु महाराज ने पांडे नूं सगन पाउन तो रोकिया, संगतां दी चिट्ठी नूं पढ़िया वाचिया ते गुरु दियां संगतां दा विचार सिर मत्थे रखदिया होया चंदू दी लड़की दा रिश्ता लैण तों इनकार कर दिता। पांडा ते नाई दिल्ली वापस रवाना हो गए। उधरों जहांगीर बादशाह भी लाहौर आया होया सी। चंदू अते होर गुरु घर दे विरोधियां ने रल के गुरु जी दे विरुद्ध जो कुछ जहांगीर नूं कह ओ बोल ताड़ी जथा आपदी सेवा विच हे क्यों रखता है।